गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त।

सवारे गावन तुदन इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर गमाश पयाले गावन तुदनो

हाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा।

त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सत गुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जान सत गुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन।

सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया।

हाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवकोन सोख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट

जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे, छड़ जाहे भउ जल।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहसी गुरु जी के पास दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक रहते आए फिर अंकित करते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दयावैदाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के प्रतरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पास दर दत्ते अंतर के घर सत बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया तपिया जिना नाम जपया वन चक्या दे चलाई ते वाहे दे कंडेड की दर्द ना प्यार सत्यार की कमाई दर्द अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीध ते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आरे न चराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानिया की धर्म नहीं आ रहा से किसे तो कैसा स्वास्थ्य संघ निभाया तेना नहीं कमाए जाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु पाता गुरुद्वार दाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता है जित आमण का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब दरचार्यत देख दे की फतेह बिद की पैज पंथकी जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे बुंगे जुग जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की प्रवाज पंथ सदा सहायता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ ने छोड़िया गलत दर्शन दास सेवा महल का दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास हे की प्रवाज जी आप जी के चन कमला दरदास ने दास जी अनबख्श की है अद जाना पितर गुरबाणी सुखमी साहब का संपूर्ण पाठ दिता है उपरंत संध्या समय जान के आपके चरना सोदार रह राज साहब के पाठ किधर कृपा करो हो भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतं के हिरदय सारी कृपा का करो जी अगो तो शोध के पितर बाणी टाणी बर बुद्धि बख्श जी करो विवाज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता पिदर कराप शाह देगा तैयार करे हाजन दतार आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद साह संगत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी जा पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगा का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश विदेश रखा बख्शिश करो जी दतार कृपा करो मेहर करो सच्चे पातशाह जीओ इस वे आप दखिया दातों जो नगर तुर सवारी प्रवान कर दी गुरु गरीब नवाज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी करा बख्शो अजे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करनी दार कृपा करो अमृत वेले तो लैके दरते आई साफ संगत दर प्रवान करो कड़िया लेके लाओ संगतों का दर से तिर फिर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी विवाह कृपा करो सिख कौम खालसा पंथ एक तत्वाग प्यार की बख्शिश करके सत संतोख की दाज बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्श का निर्भरता करो जी विवाह कृपा करो दूर दाज करना बैठिया दाई फतह की श्रवण कर रही सारे संगतान हाजिर प्रवान टुकड़िया लेखे लाओ सतार आपने कृपा की संगत उदो बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत दर संगत माया भेटा चरणा प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सफल करो कार्य वाद मददार साफ संगत शुभकामनावां समाधा पूरियां करो जी तार मेहर करो सेवा प्रवान करो पुनः कमाई बख्शो वेदर को नवे बख्शकर प्रण अज शाम कथा की बारमता वास्ते आगा बख्शो सारे रहते का स्वार के चरणा मददार शुद्ध के पितर सेवा की मदद करनी आप अंक संघ हो सही प्यारे मेरे जिन्हें सनातन नाम चता नानक नाम चढ़ी करा तेरे पाने वाहेगुरु जी का खालसा।

दोहे कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक देह कर हथ सतनाम

सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप जी दी हजूरी च शब्द का पाठ करदे आं, अर्थ करदे आं, विचार करदे आं, बेअंत भुलां होईआं ने साध संगत जी आप जी ने बख्श देना। कल दा दिन दुपहरे इत्थे अगले सोमवार तो लैके शुक्रवार तक गुरुद्वारा फरीदकोट साहब विखे आप संगत दे दर्शन करांगे। इसे लड़ी दे आप आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: पाती
1: नहीं तुल राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
1: नौकट पृथ्वी फिरै चिर जीव
0: महा उदास तपी सरथी व
1: अगन माह ओ मत प्राण
0: कनक असव है वर भूम दान
1: नियुली कर्म कर बहु आसन
0: जैन मार्ग संयम अत साधन
1: निमक निमक कर शरीर कटाव
0: तौ भी हो मैं मैल न जाव
1: हर के नाम सम सर कृष्ण है
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन काम नाम तीरथ दे छुट
0: गर्भ गुमान न मन ते हुटा
1: सोच करे दिन सुवर रात
0: मन की मैल न तन ते जात
1: इस देही को बहु साधना करे
0: मन ते कबहू न बिखिया टरे
1: जल तो वह बहु देह अनीत
0: शुद्ध कहाँ होए काची पीत
1: मानवर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतत बहु मूच
1: बहुत स्यान पुजम का भव्यप
0: अनेक जतन कर त्रिशन

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत काहे
1: तिष्ठा कर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंधत तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद वसह सुख मंदर
1: तिसे तिहाए सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
1: आठ पहर सिमरौ तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा तिहाइय त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हरावे
1: तिसे त्याग कथ अवर लुभावे
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
0: जय प्रसाद तुझ सबको मन
1: मुख ताको जस रसन बखान
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जब त दरगह मान पावे
1: नानक पत सेती कर जावे
0: जय प्रसाद आरोग कंचन देही
1: लिव लावो तिस राम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: जय प्रसाद तुझको न पहुचे
1: मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: मन तिसमें क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी
1: मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठत सत तिसहते आई
0: तिसहते आए जो एक अलख है
1: निहा उहा नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करह पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस का है
0: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेख है बिस्माद
0: जय प्रसाद बोल है अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समाव
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर गत लागो
1: गुर प्रसाद नानक।

0: अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत,
1: साध संग मल सगली खोत,
0: साध कै संग मिटाय अभिमान,
1: साध के संग परटे सो ज्ञान,
0: साध कै संग बुझे प्रभ नेरा,
1: संग सबोत नवेरा,
0: साध कै संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक उपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभ माहे समाने,
0: साध कै संग अगोचर मिले,
1: साध कै संग सदा प्रट फुले,
0: साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर वैन,
0: साध के संग नकत हूँ तावे,
1: संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न,
0: साध संग

0: साध कै संग न कब होता वै
1: साध कै संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस अगोचर लह
1: साधु कै संग अजर
0: साध कै संग बसे थान ऊचे
1: साधु कै संग महल ऊचे
0: साध कै संग दृढ़ सब धर्म
1: साध कै संग केवल पार ब्रह्म
0: साध कै संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु कै करवा
0: साध कै संग सब कुल उधार
1: साध संग साजन मीत कुटुंब।

0: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान,
1: जो करता ऐसा ही जुगत,
0: नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करावन जोग,
0: प्रभ पावे सोई फुन होग,
1: पसरे हो आप होए अनंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार।

0: प्रकाश
1: कई कोट तत के बेते
0: सदा निहार है एको नेत्र
1: कई कोट नाम रस पीव
0: अमर भय सद सद ही जीव
1: कई कोट नाम गुण गाव
0: आत्म रस सुख सहज

0: अष्टपदे जिसके अंतर राज मान
1: सो नरक पापी हो वत सुवान
0: जो जन मैं जो वनवंत
1: सो हो वत बिष्टा का जंत
0: आपस को कर्म वंत कहावे
1: जन्म मरे बहु जोन प्रमावे
0: तन पूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे
0: तनवंता होए कर गरवावे
1: तृण समान काश संग न जावे
0: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस
1: पल भीतर ताका होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय किस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगह कहो कैसे गावे
0: आप सको जो पला कहावे
1: तसे पलाई निकट न आवे
0: सब की रेन जा का मन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: अब इस को सुख नाही कोए
0: जब हे जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जोन मह फिरता
0: जब तारे को वेरी मीत
1: तब लग ने चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हों छूटे
0: सहज कटे लाको उठता वे
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नह तृप का थावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बृथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसै

0: अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटै
0: संत कै दुखन सुख सब जाए
1: संत कै दुखन नरक महबाए
0: संत कै दुखन मत

0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दुख मह दुख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख न सुख ते तरह,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अत बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी कितै काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइय,
1: संत का दुखी उजड़ पाइय,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सांस बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे,
1: अपन बीज आपे ही काहे,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लय ओवार,
0: संत का दुखी इउं बिल लाए,
1: इउं जल भी हुन मछली तड़पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजै,
1: इउं भाव की धन नहीं त्रापै,
0: संत का दुखी छुटै अकेला,
1: इउं बुआर तिल खेत माहे दोएला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहै तो,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कह दो,
0: किरत निंदक का तुर ही पाया,
1: नानक जो दिस भावे सोई जिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को नरक मिल सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइय,
1: संत का दुखी न मरे न जीवे,
0: संत के दुखी की पूजे न आशा,
1: संत के दुखी चले न आशा,
0: संत के दुख न तृष्टा कोए,
1: जैसा भावे तैसा कोई होए,
0: पया किरत न मेटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभु की उस्तत करहो दिन रात,
1: तिसे ते आवो सास विरास,
0: सब कछु वरतै।

0: सदा हर जाप।
1: अविनाशी प्रभ आपे आप,
0: आपन किया कछु न होए,
1: जे सौ प्राणी लोचे कोए,
0: इस बिन नाही तेरा किश काम,
1: गत नानक जप एक हर नाम,
0: रूपवंत होए नाही मोह,
1: प्रभ की ज्योत सगल घट सो है,
0: अनवंता होए क्या को गर्व,
1: जा सब किश तिस का दी।

0: वाचो तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिलाई है
1: पूर्व लिखे का लिखिया पाई है
0: दुख सुख प्रभु देव हार
1: अवर त्याग तू तिसै चितार
0: जो कछ करे सोई सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन वस्त आई तेरा संग
1: लपट रहे ओ रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पथ सेती कर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: अज अभमान लेहो मन मोल
1: राम नाम हृदय मैं तोल
0: लाद खेप संत है संचाल
1: अवर त्याग बिखिया जंजाल
0: तन तन कह सब कोय
1: मुख उजल हर दर गह सोए
0: एहो बापार बिरला बापार
1: नानक ता कह सद बलहार
0: चरण साध के तोय तोय बियो
1: अर्प साध को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान
1: साधु पर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा बड़ भागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: अनक बिघन ते साधु राखे
1: हर गुण गाय अमृत रस चाखा है
0: ओढ़ गई संत है दरआया
1: सर्व सुख नानक तेह पाया
0: मृतक को जीवालन हार
1: भूखे को देवत आधार
0: सर्व निधान जाके दृष्टि माहे
1: पूर्व लिखे का लहना पाहे
0: सब किस दिस का ओ करने जोग
1: जिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी
1: सब ते ऊच निर्मल एह करनी
0: कर कृपा जिस को नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल थिया
0: जा कह मन गुर की प्रतीत
1: तिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: भगत भगत सुनिए देह लोए
1: जा कह हृदय एको होए
0: सच करनी सचता की रहत
1: सच हृदय सत मुख कहत
0: साची दृष्ट साचा आकार
1: सच वरत साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
1: नानक सो जन सच

0: उपदी सतगुरु सिख की करह प्रतपाल
1: सेवक को गुरु सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हिरा
1: गुरु बचने हर नाम उचरा
0: सतगुर सिख के बंधन काटे
1: गुर का सिख विकार ते हटे
0: सतगुर सिख को नाम धन दे
1: गुर का सिख वडभागी है
0: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
1: नानक सतगुर सिख

0: सच उपदेश सेवक कौ दे
1: मोह माया कै संग न लेप
0: मन मैं रख है हर हर एको
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम मोह दुख तहते नासे
1: तप्त माहे ठाड वरदाई
0: आनंद भया दुख न

0: भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखो मन माहे
1: जन जन्म के तिलक जाए
0: आप जपहो अवरा नाम जपावहो
2: सुनत कहत रहत गत पावहो
0: सार भूत सत हर को नाओ
2: सहस पाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उतर समैलो
2: जाए हो मैं बिख बैल
0: ओहे अचिंत बसै सुख

0: पूरन पुरख नहीं डोला ने
1: ऊपर प्रेम रस रंग
0: उपजय चाओ साध कै संग
1: हरे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रकाश अन दिन लिवला
1: बड भागी जपया ब्रह्म सोए
0: नानक ना मरते सुख होए
1: की मनसा पूरी पई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई।

0: जब अकार एहो कछ न दृष्टिता
1: पाप पुन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संग कमाद
0: जब इसका बरन चिहन न जापत
1: तब हरख सोख कहो किस बेआपत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आप भ्रतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी
0: जब कहे अरागम अपार
1: तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज भाए
1: तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आप अपनी ज्योत दर है
1: तब कवन निडर कवन कत डर है
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुखे अपने आसन
1: तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम के त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाद निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचरजा
1: नानक आपन रूप आप ही उपरजा
0: यह निर्मल पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह शाल शिद्र लगत कहो कीस
0: यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तह किसे भूख कवन त्रिपति।

0: अष्टपदी आप कथ है आप सुनने हार
1: है एक आप विस्तार
0: जाति स्वभाव है ता श्रेष्ठ उपाय
1: अपने भाणे लय समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: अपन सो सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जी हो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी।

0: सार।
1: आप तरह लोक कहने सुतार,
0: सफल जीवन सफलता का संग,
1: जाकै मन लागा हर रंग,
0: जय जय शब्द अनाहद बाजे,
1: सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे,
0: प्रगटे गोपाल महांत के माथे,
1: नानक उदरे ते

0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: पाए स्थान
0: बहुर न होवे आवन जान
1: हर तन खाड चल जन सोए
0: नानक जसै प्राप्त होए
1: हेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रव ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान।

0: असांख जाप असांख पाओ असांख पूजा असांख ता पताओ
1: असांख ग्रंथ मुख वेद पाठ असांख जोग मन रहे अदास
0: असांख भगत।

0: असंख मलेश मल पाखाए, असंख निंदक सिर करह पार।
1: नानक नीज कहा विचार, वारिया न जावा एक बार।

0: साहेब सरी सब को सरनायक जाजगन एक सो एक दवैया
1: नवदेव फरिंद ने साचर जी भूत भविष्य भूत भविष्य भगवान जब

0: जो सदा हमारे पश्चा
1: दरिया सोजो कर यह रक्षा
0: रख लो मोह रखन हारे
1: साहेब संत सहाय प्यारे
0: बंदुष्टन के हंता
1: तुम हो पुरी चतुर दस कंता
0: पाए ब्रह्मा बिपतरा
1: काल पाए सब जो अवतरा
0: पाए कर विष्णु प्रकाशा
1: सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी शिव कियो
1: वेद राज ब्रह्मा जो थियो
0: जवन काल सब लोक सवारा
1: नमस्कार है तहे हमारा
0: जवन काल सब जग

फिर भरिया हथ रख के अपनी बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दी दात बख्शिश करके निवाजना सतगुरु जीओ बेअंत संगतां ने।

पवित्र हुक्म बख्शिश करके दर आई समूह संगत दी गरीब नवाजी कर दे हुए अगले दीवान सजाउंदी आग्या होवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला।

पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छ।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी बोधि पाछे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकद पुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण निध्याता है सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार तैंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चार ही मुक्ते हटिया जपिया तपिया नाम जपिया वन छकिया दे चलाई ते वाही दे किंडिट किया दना प्यार सत्यार की कमाई दस अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाईया चरखड़िया चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके सत्संग निभाया तिना ही कमाई दस अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आमर का सद का सन सुख होगा जहां जहां गुरु खालसा साहब तहत देख देख की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे पुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत फट के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा शाही दता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जे पंथ न छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की आदत सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया जी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ प्रतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे ताने रास हे की बनवाज जी आप जी के चरण कमला अरदास सिंह दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान संगत दर्शन दस दे के निहाल दता जियो बेहद बाणिया ने पाठ दता एस वे राजीव सिंह ने आपके चरण आशा की आवाज संपूर्ण कीर्तन किए ने छह पौड़िया नाम साहब ने कीर्तन तार कृपा करो हुई भुल चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय कृपालता करो जी। गुरु जी महाराज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दाता विकड़ाप साझे देगा तैयार करके हाथ दतार आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद साहब संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुख कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी की मैं बख्शिश करो गुरु सब सचे पातशाह जी आपके चानक अरदास तार पिता जी कानू आने छोटे घलोकारे में तार पिता जी जिथे गरीब नवाज मुगल फौजा लखा की गिनती गरीब घेरा पा गरीब नवाज जी हो उसे गरीब नवाज आप भी चाहे सेवा कर रहे आप भी बख्शिया दातों की पालना कर रहे तार पिता जी हो सिंघा सिंघणिया गरीब दस बारह हजार सिंघा सिंघणिया बच्चों गरीब नवाज उन्होंने दाल में शहीद किया दतार जी सो आप के नाम से गरीब नवाज उस समय के सिंघा सिंघणिया बच्चों ने अपन कुर्बानियां आपके चरणों वास्ते दित्तियां तार कृपा करो बख्शिश करो मेहर कर दे तार जी उन्होंने सारे दी आत्माओं ने अपने चरण की दाल बख्शिश करो अज सिख कौम खालसा पंथ तार पिता जी उन्होंने दर्शाए मार्ग में अपनाने वास्ते उन्होंने पाइया रीतों चलने वास्ते तार पिता जी सब ने उन्होंने बख्शिया दातों की गरीब आज पालना कर ली भावना की दाल बख्शो भावना की दाल बख्शो गरीब आज बख्शो सत्य पातशाह जी हो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरते आई हैं साफ संगत जाल जी दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत दर से तेरे पर पेट बन शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज आप दख्शिया दाता जी नगर तुर सेवारियां प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैजी सिंघा सिंघणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बखने की बालता करो। गुरु जी महाराज सेव कौम खास संबंध में एकता सुभाग प्यार जी बख्शिश करके सत नाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शिश करो। गुरु महाराज सदा आप जी बख्शिया दातों का पालना करने वास्ते बार बिताग बख्शो मेहर करो दतार दूर दराज कर बैठी लाइव पता कितने शर्म करनी है सारे संगत हाजिया प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आपने कृपा जी संगत उदो बख्शे ने संगत आपके चरण धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत हर संगत माया भेटा कर चरण
ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਦਤਾਰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਤਾਰ ਬਿਰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਤਾਰ ਬਿਰਦਾ ਜੀ ਬੇਅਤਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚੜ੍ਹ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਰ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਵਾਜ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਦਰਵਾਜ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹਜਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरस।

0: कृपया ईश्वर विश्वास हाजिरी करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, कोई नहीं समा आओ अगला समा श्रवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: आ गए सुख मेरे मीता, आचे आनंद पाप कीता, परमेश्वर बंत बनाई फिर डोत कतु नाही। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पुत्र राज दरबार दी हाजरी भर के कथा कीर्तन सरवण करके साहबां दी बख्शां लहरी परम सत्कार जो साध संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। केसन पातशाह पा हरप्रीत सिंह जी तेना कीर्तन जथा जिन्होंने आप ही राही बन के कीर्तन सरवण कराए ने, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ कुछ एक सूचना वा कि एक तो आप जो नॉर्थ से साउथ हाल शुरू किए ने दो स्टोरियां बनाई, उस वास्ते बेनती है दसवंध क्ढण लिए मेरे पास फार्म आ गए ने, तो आप भर के दे दौ ताकि बैंक के ऑटोमैटिकली हर महीने मर्जी थोड़ी $25 लिखने, 25 लिखते हो 50, 100 बद साढ़े पास 10,000 वाले भी है, 20,000 वाले भी है महीने के। हाँ जी, सो जिन्ना भी जो गुरु की बख्श किसी पर होंगी वो हिसाब ना अपना भर के फार्म पूरा कंप्लीट करके साइन करके डेट कर करके मैनू दे दौ या कृपाल सिंह अटवाल उन्होंने दे दौ ताकि ये फिर प्रोसैस में आ सकन। तो मेरे पास फार्म आने शुरू हो भी गए ने अज, तो मैं खाली फार्म भी लैके आया हो लैके कृपा कर। उस तो अगली भी सूचना जी कि जो सहज पाठ आप शुरू किए ने सरद भरे रही उन्होंने भोग पैणगे 18 जून तो बाद धन धन गुरु अर्जन देव साहब जी की महान शहीदी तो जिन्होंने आरंभ करने ने उस तक पूरे कर लेने, अपने नाम मेरे पास दे दें या टैक्सट कर दौ 408-712-4145। पातशाह परपिंदरपाल सिंह जी साढ़े पास पिछले सोमवार तो कथा कर रहे हैं भगत कबीर जी की लड़ी बार सरोकों की, अज उन्हों का इस फेरी का आखिरी दीवान है जी 12:15 तो लैके 1:30 बजे तक। आप सब न बेनती है उस वे हाजिरी भरन की मेन हाल में। अज छोटा घलूकारा है वह भी आप मना रहे हैं, तो बाकी सूचनावान सारिया छड़ जानिया, तो मेरे पास कुछ लिखती तौर पर आईया हूँ वो एक रह गई अपनी। पातशाह भाई इंद्रजीत सिंह साढ़े खालसा साढ़े इस गुरु घर हजूरी राग दरबार साहब वाले काफ़ी साल सेवा करते हैं कीर्तन की, उन्होंने मिठी याद 30 जून में प्रोग्राम स्पैशल हो रहा गुरु घर वालों, इतने शाम के 6 बजे तो लैके 9 बजे तक समूह संगतों को बेनती है परिवार सहित आके हाजरी भर के श्रद्धांजलि अर्पण कर ली। हूँ जो लिखती मेरे पास आई मैं हाले पढ़िया नहीं पर जल्दी जल्दी दस दिना। एक तो है जी कि प्राइमरी इलैक्शन हो रही US दियाँ, तो वह थानू आप डाक राही लिफाफे घर आ गया, जो सिटीजन है वह पा सकते वोट US सिटीजन, तो वह अपने मुकाम करके तो उन्होंने अपने जल्दी से जल्दी 2 जून की इलैक्शन है, 2 जून में 2 तो पहले पहला आप पार्लीमेंट के आके वो जा सकन। तो इतने गुरद्वारा साहब की लाइब्रेरी जी है वह भी साडा पुलिस स्टेशन बन चुका है US का, तो उत्थे भी मेरा ख्याल लिखा उन्होंने भी उत्थे भी अपन उदन दे सकते उन्होंने दोनों भी। अगे चलिए जी, हाँ गुरद्वारा वोटिंग सेंटर हैगा ये साडा लाइब्रेरी च, तो उत्थे वोटिंग भी कर सकते हो तुसी दो नू नहीं पर पहला हो रही शुरू जी 30 मई तो लैके 2 जून तक उत्थे होनी है, सो 30, 31 ते पहली तो 4 दिन लाइब्रेरी च आके भी तुसी जिहड़े इस एरिए दे हैगे आ जिन्हां नूं पोलिंग स्टेशन लगता वह पाउणगे वोट इत्थे, असीं नहीं पा सकते साडा पोलिंग स्टेशन, मैं अपना भेज दिता वैसे पोल जिहड़ा हैगा फार्म भर के वोटिंग वाला, तो मैं जिन जे अज आ जाए तो मैं दूए दिन ही मेल कर देना टिक मार करके सारा कुछ करके, उड़ीकण की लोड़ नहीं पैंदी। सो एक बार फिर बेनती है जिन्हां ने आ फार्म लैने मेरे पासों लै लो भरन वास्ते, भर के तुसीं मैनूं दे सकते हो जा कृपाल सिंह अटवाल उन्होंने जो साढ़े खजानची ने। वाहेगुरू जी का खालसा। हाँ हूँ पाप जी कीर्तन सरन कराने पातशाह भाई राम सिंह जी गुरदासपुर वाले समान उन्होंने पता है जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू फतेह।

अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पे भूले सुत दाराशो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास राखो शरणाय दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो कबीर आंखी केरे माटू के पल पल गई बेहाए मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए कबीर आंखी केरे माटू के पल पल गई बेहाए मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जो हफ्तावरी गुरमत दीवान सजदे हन इस हफ्तावरी गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो और अज दा ए दीवान

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वासी बोधी पाचे दसवीं वृत्त भगवत जी समर कह गुरु नानक लई त्याए। प्रियंकृत गुरते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण दी त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध्यावे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह दे पुत्र आत्म स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठ दर दत्ते अंतर के खाता से बोलो जी। वाहेगुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम जपया वंड चक्या दे चलाई तेग वाही देख ढिड किया देना प्यार सच्यार की कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म सही दिते बंद बंद कटवाए कोपरिया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सिख इसे कैसा सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु गुरुद्वारा अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चेत आवण का सद का सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा जी साहब चरियाए देख देख की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्हें खुले दर्शन की दात से अठमाल दान अपने खालसा जी बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार पिता जी हो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताले रास। गिवरबाज जी आपके चन कौला दरदास मिनट आपने बख्शिश की जगरबाज अज ऐतवार के सोहने कथा कीर्तन दरबार आपके चरणा में सज्जन दतार जी जिसके राजे सिंह ने पितर गुरबाणी के कीर्तन गायन किए ने महान विद्वान वीर ने कथा विचारा कीतिया ने कृपा करो दतार वो अं भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कर परिवार गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय पछाने कृपालता करो जी। अगो तो शोध से पितर बाणी चारनी मन बुद्धि बख्शिश करो गिवरबाज इस आप जी बख्शिया दातिया चो लंगर देगा जी तुट सहाइया प्रवान कर दतार कृपा करो जी। आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिए संघा सिंघनिया तंदुरुस्ती बख्शो चाची कर बख्शो सदा इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो गरीब रिवाज तार मिलता जी हो गरीब रिवाज जी छोटा गलू कारा कानून के शब्द दाशाह जी ऐसा गरीब रिवाज आपके चरणा उन्होंने सारे वृतांत आपके चरणा गरीब रिवाज विद्वान भीर ने आपके चरणा चे पातशाह जी संगत विचार साझिया कीतिया ने कृपा दतार जी उन्होंने सिंघा सिंघणिया ने जतार मिलता जी जिन्होंने साडे वास्ते आप भी एक गुरसिखी कायम रखने वास्ते आप दिया बख्शिया धन्यवाद कर दतार जी हो सिंघा सिंघणिया ने दतार जी बच्चिया ने अपने शीश कुर्बान किए गरीब नवाज उन्होंने याद कर दिया तार पिता जी अज उन्होंने आत्मावान ने याद कर दिया तार जी उन्होंने समूह संगत वालों श्रद्धांजलियां भेट की जा रही कृपा करो चरणा प्रवान करनिया ग्रंथ साहब तार पिता जी होर गरीब नवाज महान शख्सियत जिन्हें आपके चरणा आप जी की खुशकी वास्ते आपके चरणा की चाजी करा वास्ते गरीब नवाज अणथक कोशिशा कर रही ने सारे गरीब नवाज आपके चरणा च सम्मान किया गया कृपा करो इस समय दार जी आप गरीब नवाज बख्शिश करके इन्हों गरीब नवाज सारे वीर होर चाजी कला अपने चरणा की सेवा करने वास्ते सेह कौम की बच्चों की सेवा करने वास्ते होर उद्यम बख्शो उत्साह बख्शित करने की कृपालता करो और सेह कौम चाजी कला रखने की कृपालता कर दार सेह कौम की कृपा करनी एकता विभाग प्यार की बख्शिश करके गरीब नवाज हर प्रकार की रख्या बख्शो हर मैदान जवान फर्द बख्शन की कृपालता करो दतार जी बख्शिश करो गरीब नवाज विण बोलिया सब के जान रखे सरदार बख्शिश करो दतार जी मेरा तो करो गरीब नवाज अमृत वेड़े तो लैके दर से आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिख के लाओ संगत का दर से तिर भर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो दतार जी हो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पितर गुनामे बख्शक उपरंत उपरंत गरीब नवाज जी हो गैली नंबर एक विच बात पैद गीत बाद रमता वासी आगा बख्शो रेंदे कार सवार के चन्न तुरा जी बनाओ सही प्यारे मेरे जिले मेरे आपका नाम जितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक